पावन तुद नौ पवन पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म द्वारे गावन तुद नौ चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुद नौ ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुद नौ इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ न रखे।

वड्डा आखे सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए न कहे आ जाए। कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा। कोए ना जाने तेरा किता केवड़ चीरा, रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई।

किन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परदास। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु उपाय।

तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिद्धान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जा।

सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्या वह तुद जी हर सच्चे सिरज।

संतोह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा।

वह जो सेवह तुत जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावह हर त्यावह तुत जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ।

जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता, तेरी अनिक कर है हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई।

मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया।

मूरख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवां।

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो, आप हाथ दै मुहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो।

हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो।

आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे।

बरनत पिन पिन तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि कूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी सृष्टि दिखाए अचम भाव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भाव। आब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट चाह छव सकै न कोई।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया।

पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरै छड़ जाहे पौजल विखम सगाहो गुर सब दी पार पाहे जिन को लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह ए

0: चाहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू
1: ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब तेरे तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरे कृपा में सुख कन्हेरे कोई ना जाने तुमरा अंत उचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूतर तुम ते हो सो आज्ञा तुमरे गत मित तुम्ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही। दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन द्यावे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी सह बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुभाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां ना चराए गुरुद्वारियां दी सेवा दी कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी के साथ सत्संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी सह बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चितावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जा खालसा जी। साहिब तहत हर शरियात देखते फतेह बिरद की पाए पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मरनी वा मत उची मत पत का रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ ते सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाण्यो के माण निताण्यो के ताण न्योटियां दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुत पावे ता आने रास महाराज जी आप जी दे चरणा अरदास बेनती महाराज जी आप जी दी महान बख्शिश होई शामा दे दीवाना दी आरंभता होई संगती रूप विच संपूर्ण सुखमणी साहब जी दे जाप होए ने संध्या भगता समा जान के सोदै रह साहब दे पाठ हे महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिया बाणी पढ़दिया आप जी दी सेवा संभाल करदिया होइया बेअंत बेअंत फुलां बख्श देणियां जी अगे वाते समत बख्शिश करने शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बालू तों बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईया संगतां दे हिरदिआं तों वसाउणा आईया संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दीआं तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशा विदेशा विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जीओ बेअंत संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी ते जाप सरवण करनियां हन ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਰਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋਸ਼ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੇ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਪੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾਮ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸ ਉਤਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਣ ਖੰਡਾ।

ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नह कीनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सत्कार योग सत्संग जीव सतगुरां दी पार बख्शिश रहमत हुई। संध्या वक्त का समा सतगुरां ने सानू बख्शिश किया है। तुसी बड़े प्यार सत्कार भावना दे नाल सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के सौदा रहरा साहब दे पाठ सरवण कीते ने अरदास विच शामिल होए हो। पावन पवित्र हुक्मनामा सरवण कीता, सतगुरु कृपा करन साडा सारिआं दा गाविआ सुणिआ महाराज दर ते प्रवान करन। इसे तरह गुरु चरणां नाल जुड़े रहिए। बेनती है, गुरु घर दीआं दो बिल्डिंगां नॉर्थ हाल एंड साउथ हाल बन रहीआं ने। आप संगतां वध चढ़ के सेवा कर रहे होर भी आप संगतां दे चरणां च बेनती, जिन्ना भी हो सके दसवंध की कारपेटा कट के गुरु घर दे विच सेवा करके गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करिए जी। 30 सितंबर नूं जोड़ मेला बाबा बुढ़ा साहब जी का आ रहा है। इस पावन अस्थान ते आप संगतां दे सहयोग नाल मनाया जाएगा। 1 अक्टूबर नूं धन धन साहब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी का गुरुता गद्दी दिवस आ रहा है। 5 अक्टूबर नूं धन धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का ज्योति जोत दिहाड़ा आ रहा। 9 अक्टूबर नूं शहीदी भाई सुखदेव सिंह सुखा एंड भाई हरजिंदर सिंह जिंदा दी आ रही है। 10 अक्टूबर नूं जन्म दिन भाई तारू सिंह जी का आ रहा है। उस तो बाद 27 अक्टूबर नूं धन धन साहब श्री गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश पुरब जो आप संगतां दे सहयोग नाल इस पावन संस्थान ते बहुत वड्डी पद्धर ते मनाया जांदा। 27 अक्टूबर नूं महाराज जी का उप पवित्र दिहाड़ा आ रहा है। यह सारे पावन पवित्र दिहाड़े आप संगतां दे सहयोग नाल गुरु घर विच मनाए जांदे ने। जरूर इन्हां दिहाड़ियां ते सहयोग बख्शना, गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करनियां जीओ। होर प्रोग्रामां दी जानकारी वास्ते तुसीं साडे गुरु घर दे सकत्तर सरदार राजेंद्र सिंह जी मंगर साहब हुणां नाल संपर्क कर सकदे हो। उन्हां दा फोन नंबर है 4087124145 ते संपर्क करके होर गुरु घर दे प्रोग्रामां दी जानकारी लै सकदे। आओ, रात्रि दे कीर्तन दरबारां दी आरंभता हो रही है। पहला आरती कीर्तन करनगे सत्कारयोग भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी उन्हां वाले। इन्हां तों बाद चल रही जपजी साहब की लड़ीवार कथा करनगे भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी खुजदिल। उन्हां तों बाद अखीला कीर्तन करनगे सत्कारयोग भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी लहरी साहब। 8:30 बजे तक कीर्तन चलणगे। जरूर जिन्हां कोल समां है सतगुरां की गोद विच बैठ के सरवण करो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

0: மகாராஜ் மேற்கரம் सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच बैठ के पागां वालियां रूहां कर्मां वालियां रूहां इंज कह लो जिन्हां ते महाराज निहाल होवे ओही सतगुरां दी पावन गोद विच बैंदा है। कल्ला बैंदा ही नहीं, स्वासां नूं सफला रसना नाल अपने मुख नूं पवित्र, जिस बोलत मुख होए पवित्र। सच्चे पातशाह कह रहे ने उंज ते जबान सारा सारा दिन बोलदी है, पर जदों कोई कीर्तन विच बाणी विच जुड़ जाए मन करके ते फिर रसना भी भागां वाली। सब तो सौखा तरीका महाराज ने साडी चोली पाया, नामे कहे त्रिलोचना मुक्ते राम समान, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन। ध्यान मन महाराज दे चरणां नाल जोड़ी रखो, स्वास सफला हो जाएगी, जीवन यात्रा सफली हो जाए। गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी का जिन्ना भी शुक्र करिए थोड़ा है। आओ पंथ दे बड़े प्यारे गुरु दे साजे हुए निवाजे हुए भाई साहब जी ज्ञानी जसवीर सिंह जी खुश दिल, उन्होंने जी आया नू दस रहा वालों समूह प्रबंधक कमेटी वालों, वो आप जिया महाराज जी दे चरणा नाल जोड़नगे। आसीस देओ, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡ

जगत सबाया, जन नानक विरले के पाव सोहावे जानतो तिर जुल दे सीस सोहाव चरनी मुख सोहावा जानतो जस गवे जियो पयतो शरणी तुमरी शरण तुम्हारी

रखो रखण हर दयाला नानक करके गोले रखो रखण हर दयाला नानक करके गोले वाहे गुरु अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल पंडार अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल पंडार अमुले आमे अमुल ले जाय अमुल पाए अमुल समाए अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल प्रवान अमुल बख्शीश अमुल निशान अमुल करम अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाय अखें वेद पाठ पुराण अखें पढ़े करें बखियाण आखें ब्रह्मे आखें इंद आखें गोपी तै गोविंद आखें ईशर आखें सिद्ध आखें किते किते बुद्ध आखें दानव आखें देव आखें सुर नर मुन जन सेव केते आखे आखण पाय केते कह कह उठ उठ जाय एते किते होर करे ता आख न सके के जे वड पावे ते वड होए नानक जाने सचा सोए।

어떤 걸로 나왔어? 어. 어.

जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे। हम रुकते फिरते कोई बात ना पूछता गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले राखो।

पाछे आनंद प्रभ कीता। परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कतहु नाही। साचे साहिब स्यो मन मान्या हर सर्व निरंतर जान्या रहा।

कीर्त गुर राम दास रख एक अरदास पाठ की।

नैनिष सहज सुख दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख हो वै शिव तख समधि नूर अरसह पुरसह तुद डिठे सच्चे पातशाह।

राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सत गुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर में उदध, जल केवल जल माही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयो साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। किरपालू सतगुरु जी ने कृपा बख्शिश कीती है, पावन पवित्र तख्तां ते अमृत वेले प्रकाश मानो करके सतगुरु जी ने दर्शन दीदार बख्शिश कीते हन। अते उपरंत अज ते इलाही दरगाही श्री मुखवाक आप जी ने सरवण कीते हन, जो सोरठ राग विच्चों भगत रविदास जी की अमृत रसना तो उचारण कीती गई बाणी है। उस बाणी विच्चों ए पावन शब्द हुक्म रूप विच सतगुरु जी ने बख्शिश कीता है। गुरु साहब जी के पावन अंग 657 अते 58 उपर ए पावन शब्द दर्ज है। भगत रविदास जी ने इस पावन शब्द अंदर ये बख्शिशे मेहरामत कीती है कि हे वाहिगुरु, जिन्ना चिर जीव मनुख माया दे भरम विच है, अग्ञानता दे हनेरे विच भुलेखे विच है, उन्ना चिर ये भरम ये फर्क ये दुविधा बनी रहिंदी है कि जीव वक्रा है, मैं वक्रा हाँ, परमात्मा वक्रा है। इस भिन्नता करके ही सारे दुख तकलीफां संसार दे ताप मनुख नूं व्यापदे हन। पर ज्यों ही तेरी कृपा किसी जीव पर हुंदी है, जद उस नूं तेरी कृपा दे द्वारा ये प्रतीत हुंदा है, भरम टुटदा है कि ये मेरी मैं भी उस परमात्मा दा ही रूप है, वो परमात्मा ही सारे पासे व्यापक है, तां ये मैं दा हंगता दा भरम टुट जांदा है। वो भरम टुटण दे नाल जीव परमात्मा विच इस तरह समा जांदा है जिवें हवा दे नाल पानी दे उत्ते लहरां तां बणदियां ने, प्रतीत हुंदा है कि लहरां वक्रियां ने पर वो पानी दे रूप हुंदियां ने। इसी तरह फुरनियां द्वारा अंगता द्वारा मनुख नू कदी कदी भरम पैंदा है कि मैं वक्रा हाँ, भिन्न हाँ, पर वो असल विच वाहिगुरु परमेश्वर दा ही रूप हुंदा है। जिवें सोना ते सोने तो बने गहने इको ही हन, पर घाड़त करके वो वक्रे प्रतीत हुंदे ने। हे वाहिगुरु, जिदे ते तू कृपा कर दे, बख्शिश कर दे, उहदे अंदर दा भरम मार देना है, भुलेखे खत्म करके उहनू अपने चरणा विच जोड़ लेना है। यही भगत जी ने अज दे इस पावन शब्द विच कृपा कीती है कि हंकार होमै मनुख दे अंदर पर्दा पा के रखदा है, वाहिगुरु तो दूरी बना के रखदा है। जदों उहदी कृपा हो जाती है, हंगता हंकार मिट के जीव उहदे विच समा जाता है। सतगुरु जी कृपा करन, सानू दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजन। अज धन धन बाबा बुढ़ा जी, तिन्हां दा जन्म दिहाड़ा भी है। जोड़ मेला बाबा बुढ़ा जी बड़े उत्साह दे नाल कथू नंगल दी धरती ते नगर रमदास विच जिथे बाबा जी दा जन्म होया, बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल उन्हां नूं याद कीता जांदा है। बहुत वड्डी सेवा गुरु घर दे विच लमेरा समा निम्रता विच हंगतां नूं मार के उन्हां ने कीती। तकरीबन 125 साल की आरबला उन्होंने बतीत की है, उहदे विच्चों बहुत लंबा समा गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तो लैकर के 6वें पातशाह तक वो सतगुरां दे घर दे सेवादार बन के रहे। ते आप हत्थी
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤਿਲਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।

सतगुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ कल कलेश तन माहि मिटावौ सिमरौ जासु विसंबरे कै नाम जपत अगंत निकै वेद प्राण सिमरत सुदाख्यर किन्ने राम नाम एकाख्यर किनका एक जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै कांकि एक दर्श तुहारो नानक संग मोहे उदारो सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाउ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कच बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन आनंद जागै प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ कै सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला श्री सिमरै जिने आप सिमराई नानक ता कैला को पाई प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किच सुजै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नामृत माहि समाई प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रदान प्रभ को सिमरह से बे मोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगै रवाला प्रभ को सिमरै से पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरह तिन अनद कनेरे प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे संत कृपा ते अंदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबू न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहस मानी प्रभ कै सिमरन निचले आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कंत न पार सिमरै से जन जिन को प्रभ मया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेत उपाय हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगला कारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द

कालो अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतु सासुवार सिगारिया गर्भगन में जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझै प्यार है दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साख सैन मुख पया बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझ है बख्श ले हो तव नानक सीजै जेह प्रसाद धारु पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुला जेह प्रसाद भोगै सब रसा सुगल समग्री सांग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसै त्यागवर संगरचना ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे नानक काढ़ लियो प्रभ आपे आदंत जो रखन हार तिस्यो प्रीत न करै गवार जा किसी वा नव निध पावै तास्यो मूड़ा मन हिलावै झूठा गुरु सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जा की टहल पावै दर्द है मान तिसै बिसारै मुगदा जान सदा सदैव भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्या कौटी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सुवस्त्र करमाने जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन ले पुतारे तो हे गर्ध प्रीत भस्म संग होए अंध कूप मैं पथ विकराल नानक काढ़ लेहु प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेखंतर मल माया छप सुनाई कछ करे छपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लुभ सुवान अंतर अगन बार तन स्वाहा गल पात्र कैसे करे अथा जा के अंतर बसै प्रभ्याप नानक तेजन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावै कर गहले होड़ निभावै काम बुझार तू जय डूरा निष्कही है तो समझै पूरा कहा विष्णु पद गावै गुंग जितन करे ताओ भी सुर भंग कह पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सुआवै न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै आनंद के लमाया रंग रसै दृढ़ कर्मान मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह आहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास।

नानक कहू न सीजई बिन नावै पत जाय। अष्टपदी दस वस्तुले पाचै पावै, एक वस्त कारण विखोट गवावै, एक पी न दे दस पी हिरले, तौ मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यों नाहीं चारा, ताकू की जय सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जिने अपना हुक्म मनाया, सर्व तोग नानक तिन पाया, अगंत साव अपनी देरा, खात पीत बरत अन दोलास, अपनी अमान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी परती ताप ही खोवै, बहुर उसका विश्वास न होवै, जिसकी बस्ती से आज्ञा राखै, प्रभु की आज्ञा मान माथै, उसते चौगुन करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भांत माया के हित, सर पर होत जान अनित, बिर की छाया स्यों रंग लावै, ओ बिन सहु मन पछतावै, जो दिसै सो चालन हार, लपटरयो तै अंध अंधार, बटाओ स्यों जो लावै नेहि, ताकू हाथ न आवै केहि, मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आप लै लाई। मिथ्या तन धन कुटम्ब सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राजोवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती सुबस्तरा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रो मो अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्त गुमान, अस्थिर पग साध की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरहे, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन न स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावह, मिथ्या मन पर लोभ लुभावह, मिथ्या तन ही पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन भूजे मिथ्या सब भये, सफल दे नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरसा नाम बिना तन अंध, मुकावता कै दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाई, मेघ बिना ज्यो खेती जाए, गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम, धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ, नानक ता कै बल बल जाओ, रहत अवर कछवर कमावत, मनी प्रीत मुखो गंडलावत, जानन हार प्रभु परबीन, बाहर भेक न खाहू पीन, अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै, जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार, जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक गुण जन चरण पराता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपह मानै, आपह आप आप करत नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, उपाव से अनप सगल ते रहत, सब कच जाने आत्म की रहत, जिस भाव है तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहा सुमाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक

प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माही जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमर हो तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसह त्या कतवर लुभावै जिह प्रसाद सुख से सुविजय मन आठ पहर ताका जस गा विजय जिह प्रसाद तु सब को मानै मुखता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पत छेती कर जावै जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लाव तिस राम सनेही जे प्रसाद तिरौ ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे जे प्रसाद आपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभु कौ कबहु न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत्य सहत्याई तिसहत्याई जो एक अलख इहां उहां नानक तेरी रख जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तिरनी की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुनह कर्ण नाद जे प्रसाद पिख है विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह समाव है सब प्रभु त्याग और कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे जिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तोता स्योराच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जब जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नान किन कै कछु न हाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह

साध के संग मुख उज्जल होत, साध संग मन सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान, साध के संग पुज्जे प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा भरने कौन परानी, नानक साध की शोभा परमहि सुमानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा परफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुई सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतूं तावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन समीत, साधु कैसंग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैरु, साध के संग न भीगा पैरु, साध के संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग नाही हो तापु, साध के संग तजै सब आपु, आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध के संग न कब हुंतावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त गोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध के संग बसै थान उचे, साधु कै संग महल पहुचे, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध के संग सब कुल उदार, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार, साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्व थान गमु, नानक साध के संग सफल जनामु, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध के संग कलुकत हरै, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला, साध संग विचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदर साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ, साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगै प्रमीठा, साधु के संग कट कर डीठा, साध संग पया क्या कारी, साध संगत पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जान है, जीता सुन है तीता बखियान है, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मुची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख किस बिन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग, जैसे सूर सर्व को सो, ब्रह्म ज्ञानी कै दृढ़ समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै तीर जेक, ज्यों बसदा को खोते को चंदन ले, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सह सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास, जैसे तारू पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन पर व्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा,
ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुत्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कै होय अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सुधा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय दाक्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकानै, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जानै, ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साधु जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक और धारै जो अंतर नाम, सर्व में भेखै भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक वपर सगल निस्तार पदी, मिथ्या नाही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शु, पर त्रय रूप न पिकै नेत्र, साध की टैर संसंग हेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोग ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा परसु, वैष्णो सो जी सुपर सुप्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए नहीं कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मंत्र निरंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप जड़ै वह नाम जपावै, नानको वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिन सह सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सासंग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम हुवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मंत्र अर्पै विष्णु परीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नामा तुम्हें सोदै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उदय जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नया वै, वेद प्राण सिमृत बूझै मूल, सुख में जानै स्थूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सा सुन पावै जन कोए, कर कृपा अंतरुर धारै, पस प्रेत मूत पात्र को तारै, सर्व रोग काउखद नाम, कल्याण रो मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सतराम दास, आत्म राम तिसन त्री आया, दास जसन तन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परे, सगल संग आत्मो दास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा हरक तैसा सोग, सदानंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरता ईसाई जुगत नानको पुर कहिया, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ, जित जित घर राखै तैसा तिन्नाऊ, आपे करन करावन जोग, प्रभावै सोई फुन होग, पस्तुर आप अंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग,
जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयालु, सिमर सिमर नानक भय निहाल। सलोक पुस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमय उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपिस्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कव का विचार है, कई कोट नव तन नाम त्याव है, नानक करते कंत न पाव है, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभ्यगातम निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माही, कई कोट पर देश पर माही, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिर जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पुण पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नखेतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमृतर शास्त्र, कई कोट की रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जाकि नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सब ते नेरे सबूते दूर, नानका पलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मरे, कई कोट भोजूनी फिर है, कई कोट बैठत ही काहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब किस प्रभ के हाथे, कई कोट भय वैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म है पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यासु, तिनको मिल्यो प्रभ विनासु, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हो आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट हो अवतार, कई जूत किन्नो विस्तार, कई बार पसरो पासार, सदा सदै के कंकार, कई कोट किन्ने बहुपात, प्रभ ते हो ब्रह्माय समात, ताकांत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो वता तुम प्रगास, कई कोट तत के बेते, सदा निहारे को नित्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर भय सत्सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ सुमारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहार ने, जल थल महील सोए। अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तिस भावे सोई होग, खिन में थाप थाप नहारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे तार अतर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब में रहा सुमाई, प्रभ पावै मानक गत पावै, प्रभ पावै ता पाथर तरावै, प्रभ पावै बिन शास्त्र राखै, प्रभ पावै ता हर गुण भाखै, प्रभ पावै ता पत सुधारै, आप करे अपन विचारै, दुहां सुरियां काप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि वरण आवै, कहो मानुक ते क्या हुए आवै, जो तुज पावै सोई करावै, इसके हाथ हुए ता सब किछ ले, जो तुज पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानता अपना बचै, परमे भूला दह दिस्तावै, निमख माए चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन्ना मिले, खिन मैं नीच कीट को राज,
पार ब्रह्म गरीब नवा जा का तिस कछु नाया वै तिस तत्काल दा दिस प्रगटा वै जा को अपनी करे बख्शीस ता का लेखा न गने जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही सुहात करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुनथियो कब हू ऊंच नीच में बसै कब हूँ सोग हर करंग हसै कब हूँ निंद चिन्ह व्यवहार कब हूँ ऊब आकाश पयाल कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावनहार कब हूँ नृत्य करै बहुपात कब हूँ सोए रह दिन रात कब हूँ माँ क्रोध विकराल कब हूँ सर्व की हो तरवाल कब हूँ हुए बह बड़ राजा कब हूँ पेकारी नीच का साजा कब हूँ अपकीर्त में आवै कब हूँ भला भला कहावै ज्यो प्रवराके तिवि ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कह कब हूँ होए पंडित करे बकेहान कब हूँ मोन धारी लावै ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधिक मुक्यान कबू कीट हस्त पतंग होए जिया अनिक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वादी दिखावै ज्यो प्रभावै तिवै नचावै ज्यो तिस भावै सोई होए नानक दूजा वर न कोए कबू सा संग त्यो पावे सुस्थान ते बहुर न आवे अंतर हुए ज्ञान प्रगास सुस्थान का नहीं विनाश मन तन अमृत एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान शलोक सुखी बसै मुसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज विमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आप इसको करवंत कहावै जन्म मरै बहुजुन परमावै धन भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक यहाँ मुखता गै सुख पावै धनवंता हुए कर गरबावै तृण समान कर संग न जावै बहुलस्कर मानुक ऊपर करे आसु पाल पीतरता का हुए बिनासु सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं हुए जाय पसमंत किसै न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे अवतारी श्रम पावे सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवै हर दरगह कौ कैसे गवै आपस कौ जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेंजा का मन हुए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ हुए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किच करता तब लग गर्व जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निचल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक छूटै सहस खटे लग कूट तावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनिक भोग बिकिया के करै नै तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ वृथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आपा प्रभ सोए जो किच किन्नु सु अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बुझै दिखै करै बबेक आप है अनेक मरै न भिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहा सुमाय आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछ उसका उकरने हार उसते भिन्न

अवतार संत के निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटे संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टे संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन त्रिगत ज्यों किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का ताव को नाहि नानक संत पावै तो होए भीगत पाए संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिक न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर।

ले मिलाई, संत का दुखी अद बीजते टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुँचे, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, अपन बीजा पे ही खाए, संत के दुखी कवर न रखन हारू, नान संत पावे ता ले उभारू, संत का दुखी इं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पाव किंदन नहीं त्रापे, संत का दुखी चुटे केला, ज्यों बुआड़ तिलके तुमाही दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्ट कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब काट तिसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसहते आवो सास गिरा, सब कछु वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेला करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिसे आपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से, शलोक तजहु सयानक सुरजन हो, सिमरो हर हर राए, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाय, अष्टपदी मानु की टेक प्रीति सब जान, देवन को एक भगवान, जिसका दिया रह अघाए, बौर न तृष्णा लग गया, मारे रखे को आप, मन कै किछ नाही हाथ, तिसका हुकम सुख होए, तिसका नाम रकंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक बिघन न लाग कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सासंग बिनसै सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक जल मथा, बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचारु, से तनवंत गणी संसारु, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, इत उत की ओ सो जी जाने, नाम समझ जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे, सासंग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, अनदिन कीर्तन केवल बखियान, कृष्ण में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की पासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिस को हर प्रभ मन चित आवे, सो संत होएला नहीं दुलावे, जिस प्रभे अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोधत सोधत सोधत सीजिया, गुर प्रसाद तत् सब बूजिया, जब देखूं तब सब किच मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल, न किच जन्मे न किच मरे, अपन चलता भी करे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मैं आप, अनिक जुगत रच थाप थाप, अविनाशी नाही किच खंड, धारण तारे हो ब्रह्मांड, अलका पे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सु सोभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेल लय कृपाल, गुर का सब जपै निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करह बिट भागै।

तिन पुर को उत्तम करमान। जो किस करै सो प्रभु कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। सहज सुभाई हुवै सो हुए, करनै हार पछाणै सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माहे सुमाहे, ओए सुख निदान उन्हों।

प्रब की जोत सगल कट सो है, धनवंता हुए क्या को गर्व है, जा सब किस किसका दिया दर्व है, अत सूरा जी को कहावे, प्रभ की कला बिना कहता है, जे को हुए बह दातार, तिस देन हार जाने गवार, जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नाम सूजन सदा अरोग, ज्यो मंदर को थामे थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन, ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है, यो अंधकार दीपक प्रकाश, गुर दर्शन देख मन हुए विगास, यो महा ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे, तिन संतन की बांचो तूर, नानक की हर लोचा, मन मूर काहे बिल लाइये, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसे चितार, जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरे अजान, कौन बसताई तेरे संग, लपट रहो रस लुभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पद छेती कर जाहे, जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अभिमान लेहु मन मूल, राम नाम हृदय महतोल, लाद की संत संचाल, अवर त्याग किया जंजाल, तन तन कह सब कोए, मुख उजल हर दर कह सोए, इहो वापार विरला वापार है, नानक ता कह सद बलिहार है, चरण साध के तुए तुए पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की धूर करो स्नान, साध ऊपर जाइये कुर्बान, साध सेवा विडभागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइये, अनिक बिगंते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे, ओट गही संतै दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक कौ जीवालन हार, भूखे को देवत आधार, सर्व निदान जा की दृष्टि माही, पूर्व लिखे का लहना पाए, सब किस तिस पाव करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जाके हृदय कोय, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत, साची दृश साचाया कार, सच वर्त साचा पासा, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता, सलोक रूप न रेख न रंग किच, त्रिहुगुण ते प्रभ भिन्न, किस हे बुझाए नानका, जिस हो वैसो प्रसन्न, अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राख, मानु की तू प्रीत आग, किस्ते परे नाही किच कोए, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद, साथ तेरे की चरणी पाऊ, नानक कै मन हो अनुराव, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरण भरण जाका नेत्र पूर, तिसका मंत्र न जाने होर, अनंद रूप मंगल सद जाकै, सर्व थोक सुनिए कर ताकै, राज में राज जोग में जोगी, तप में तपीश्वर गृष्ट में भोगी, त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया, जाकी लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, चंदास नाम त्या वैसे, त्यो गुण मह जा को परमाहे, जन्म मरे फिरिया वह जाए, ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जना वह तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे

पू रहे पूर्ण सब ठाए, नाना बिदकर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीव नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाए, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कर दे प्रवेश, सत निरत बूझै जे कोए, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, लपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिर सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस पावै सो वरतिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बुझिया तिसे आया स्वाद, रब कै रंग राजन रहे, गुर कै वचन पदार्थ लहे, हुए दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी, जन कै संग एक

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरह गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित्या गोतरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहु सास गगन सागर तरहु हर तन के भर लिहु भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सत्संग भज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुपंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल हिरतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोकै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहत वाजय सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उजरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए बैर भय सबरे नम्रत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहती राम नाम सुन रसना कहती कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभि खेप हमारी प्रभु की उस्तद करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सुहोत निदान सर्व इच्छाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान गौर न हो गया वन जान हर तन काट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मत सगल त्योदा सुंदर चतुर तत् कविता समदर्शी एक दृष्टिता फल तिस जन कै मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान

भक्त के मन विश्राम, कोट अपरासा संग मिटे, संत कृपा ते जमते छुट्टे, जाके मस्त कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए, जिस मन बसे सुने लाए परीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत, जन्म मरणता का दुख निवारे, दुर्लभ दे तत्काल उदारे, निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि समानी।

ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲੇਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖ ਹੈ ਮੰਗ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਵਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ ਜੇ ਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਪੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਜਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਾਏ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਾਏ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਾਏ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣਾਏ ਮੁਖ ਸਾਲਾ ਹਨਮੰਦ ਸੁਣਾਏ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਾਏ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਏ ਅੱਠ ਸੱਠ ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਾਏ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਾਏ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾਏ ਅੰਦੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਾਏ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ
नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। कागद कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह करण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भगण की सुध। मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत सिउ प्रगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पावा है मुख दुआर, मन्ने परवार है साधार। मन्ने तरह तारी गुर सिख, मन्ने नानक पव ही ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान। पंचे सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहै करै विचार, करते कै करणै नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तबलै उपर केता पार। धरती होर परै होर होर, तिस ते भार तलै कवण जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवण कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लेव लाए तार। कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर। असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे। असंख कूड़ियार कूड़े फेराहे, असंख मलेश मल पाखो खाहे। असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कहै विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख काहे सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण। अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे। जेव फुरमाए तेव तेव पाहे, जेता कीता तेता नाओ। विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवण कहा विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भरियै हाथ पैर तन देहे, पाणी धोतै उतर सुखे। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइयै ओ धोए। भरियै मत पापां कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। पुनी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो।
तीरथ तप दया दत दान जे को पावे तिल का मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत ना होए सो वस्त आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वक्त कवण कवण थित कवण वार कवण से रुपी माह कवण जित हुआ आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लेखन लेख कुराण थित वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सर ठीक हो साजे आपे जाने सोई केव करे आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखण सब को आख है एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असुलो एक धात लिखा होए ता लिखी है लिखा होए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाहे एती सुरत न पाइया नदियां अतः वाह पवह समुंद न जानिया समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जेत समन होना भी सरा है अंत न सिफती कहण न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण किते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंगा है जोद अपार किते अगणत नहीं विचार किते खप तुट है बेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते आ दुख भूख साध मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे के ई के जिसनो बख्से सिफत सलाह नानक पात साही पात साहो अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बखसीस अमुल निशान अमुल करम अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आख रहे ले वलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है वख्याण आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जान सेव केते आखे आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख न सक है के ही के जे वड़ पावै ते वड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल वे गाड़ ता लिखी है सिर गावार गावार सो दार के हा सो घर के हा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावण हारे गावै तुहनो पौन पाणी बैसंत्र गावै राजा धर्म द्वारे गावै चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावै इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे
गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा माश पायाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावह जोद महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खांड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से ही तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जीव ते सदी वड्याई जो ते सुभावै सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करहै बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साद संजोग विजोग दोए कार चलावह लिखे आवह भाग आदेश तिसह आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तीन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमाण ओ वेखै ऊना नदर न आवै बहुता एहो वेडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बहु लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस एत राहे पत पवड़ियां चढ़िया होए इकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाईए कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए

Majibi namastasta ajibi adesing adesi namastung apisi namastung nirtame namastung nirbame namo sarvakale namo sarvadayale namo sarvarupe namo sarvabhupe namo sarvakhape namo sarvathape namo sarvakale namo sarvapale namastasta deva namastung apiva namastung ajanme namastung subhanme namo sarvagaune namo sarvapahune namo sarvarange namo sarvapange namo kalkale namastasta dayale namastung abharane namastung amarane namastung jararang namastung kritarang namo sarvatande namo sat abande namastung nirsake namastung nirbake namastung rahime namastung karime namastung anante namastung mahante namastasta rage namastung suhage namo sarvasukham namo sarvapokham namo sarvakarta namo sarvaharta namo jog jogi namo bhog bhogi namo sarva dayale namo sarva pale chachri shantatva prasad arup hai anup hai aju hai apu hai alekh hai apekh hai anam hai akam hai ate hai ape hai ajit hai apihit hai tirman hai nidhan hai tirbarg hai asarg hai anil hai anad hai ajay hai ajad hai अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमित है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है कुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पहुणे अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जुगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमे अपोगी अपुगते नमो जोग जुगवेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सूत हरमे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पुहूप पुपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं निशनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धधा बुद्धधा बिरद कर्ता अदु उर्द अर्दं अगं ओक हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तु पराजी समस्तास्तथामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट शांत त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले
ਰਵਾਲ ਸ਼ੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਮਾਨ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਦੇਵ ਅਭੇਵ ਆਦ ਉਦਾਰ ਸਰਬ ਪਾਲਕ ਸਰਬ ਕਾਲਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪੁਨ ਕਾਲ ਯਤਰ ਤਤਰ ਵਿਰਾਜ ਹੀ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਰਸਾਲ ਨਾਮ ਠਾਮ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖ ਆਦ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨ ਆਦ ਅਸੇਖ ਦੇਸ ਔਰ ਨਾ ਭੇਸ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨ ਰਾਗ ਯਤਰ ਤਤਰ ਦੇ ਸਾਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਮ ਕਾਮ ਬਹੀਨ ਪੇਖਤ ਧਾਮ ਹੂ ਨਹਿ ਜਾਹੇ ਸਰਬ ਮਾਨ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮਾਨ ਸਦੈਵ ਮਾਨਤ ਤਾਹੇ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ ਦੇਵ ਭੇਵ ਨਾ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਭੇਦ ਔਰ ਕਤੇਵ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੋ ਜਾਨਹੀ ਕਿਹ ਜੇਬ ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਹੀਨ ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰੈ ਚਤੁਰ ਚੱਕ ਮਾਨਹੀ ਪੁਰ ਤੀਨ ਲੋਕ ਚੌਦਹ ਕੇ ਬਿਖੈ ਜਗ ਜਾਪ ਹੀ ਜਿਹ ਜਾਪ ਆਦ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜਿਹ ਥਾਪ ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਤ ਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਸਵਰਚਿਓ ਸਵਯੰ ਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੋ ਪਰਮ ਰਹਿਤ ਭੂਤ ਲਖ ਭੇਸ ਅੰਗ ਰਾਗ ਨਰੰਗ ਜਾਕੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਨਾਮ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨ ਉਸਤਤ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨ ਭੰਗ ਨਾਥਮ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਕਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ ਸਰਬਗੰਤਾ ਸਰਬਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕਹਿ ਨੇਤ ਭਾਕਤ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਆਵਹੀ ਵਹ ਚਿਤ ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣਗਨ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਸ ਅਜਾਨ ਬਾਹੁ ਸਹਾਨ ਸਾਹੋ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜਪਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਇੰਦਰਾਨ ਇੰਦਰ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ਅਨਭੂਤਾਂਗ ਆਪ ਅਭੰਗ ਗਤਮਿਤ ਅਪਾਰ ਗੁਣਗਨ ਉਦਾਰ ਮੁਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਰਭੈ ਨਿਕਾਮ ਅਤ ਦੂਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ ਆਲਿਸਿਆ ਕਰਮ ਅਦ੍ਰਿਸਿਆ ਧਰਮ ਸਰਬਾ ਪ੍ਰਣਾਡੇ ਅੰਡ ਅੰਡ ਬਾਡੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੁੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਯੰ ਕਰਿਯੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਜਾਨੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨਿਆ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨਿਆ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਭਰਮੰ ਨਾ ਪਿੱਤਰੈ ਨਾ ਕਰਮੰ ਨਾ ਕਾਏ ਅਜਨਮੰ ਅਜਾਏ ਨਾ ਚਿੱਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਪਰੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰੈ ਪਰਥੀਸੈ ਆਦਿਸੈ ਅਦ੍ਰਿਸੈ ਅਕ੍ਰਿਸੈ ਭਗਵਤੀ ਸ਼ੰਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਸਤੇ ਕਿਆ ਸ਼ਜ ਦੇਸੇ ਕਿਆ ਭਿਜ ਪੇਸੈ ਕਿਆ ਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕਿਆ ਭੰਜ ਭਰਮੈ ਕਿਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕਿਆ ਦੈਤ ਸੋਕੈ ਕਿਆ ਅਵਧੂਤ ਵਰਣੈ ਕਿ ਵਿਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕਿ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੰ ਤੁਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੋਕ ਵਰਨੈ ਕਿ ਸਰਬਾ ਅਭਰਨੈ ਕਿ ਜਗਤੰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰ ਸ਼ਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪੇ ਕਿ ਅਨਭਉ ਅਨੂਪੇ ਕਿ ਆਦ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਭੇਵ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਰੰ ਬਹੀਨੈ ਕਿ ਏਕੈ ਅਦੀਨੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰਜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਬੇਅਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕਿ ਅਹਬੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਨ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨੈਦ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗੌਨੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਉਨੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪੇਸ਼ੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪੇਸ਼ੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸੋਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪੋਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਤ੍ਰਾਣੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦ੍ਰੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦ੍ਰੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੈ ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇ ਸੁਲਸਲਾਮੈ ਸਲੀਕਤ ਮੁਦਾਮੈ ਗਨੀ ਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮਾਨੈ ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜ਼ੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀਫਲ ਅਜੀਮੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਅਨੇਕੋ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀ ਜੁਲਨੇ ਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀ ਮੁਲਖੇ ਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਮੁਖਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਯੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ
सदैवं स्वरूप है, अपेदि अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तो सलाम है, सदैव अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबादे अगंजे अगादे सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है, अचेज है, अशुत है, किनर्कं प्रणाश है, प्रत्युल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैवं सदा है, विभुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुगत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, चाचरी छंद अपांग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचंत है, सुनंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटा है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्वा प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वा प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथुं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी या नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी या नूपे न पुत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न ताता है न माता है न जाता है न पाता है निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत त्वा प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशा सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन चिराग है के कामल करीम है के राज कर रहीम है के रोजी देहंद है के राज कर रहंद है करीमल कमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल नवाज है हरीफुल शिकान है हरासुल फिकान है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमाम तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईश है समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है कि जोरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि अमितो अपंग है मधुभार शंत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम आन शेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास आजान बाहो एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशिज गात आज जिना बात अनझंज गात अनरंज पात अनठट भंडार अनठट अपार आडीठ कर्म अतठीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बुलमना छंद त्व प्रसाद करुणालय है अर्कालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीकृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खालकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भव भंजन है अरि गंजन है रे प्रतापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे
नमो राजसंग तमसंग शांत रूपे नमो परम तत्तं अततं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी या नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी या कामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपह अभय अबू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अढ़ा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग बेभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमुल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग विभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग विभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवें तो प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरे घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पहे तो कहा पहे भूप तो अंत को नंगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गनय नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के तम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सबै सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चार है सार की तार पछैया तुरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं जग चार लवैया साहिब श्री सब को सिरनायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव सनिंदन साचर भूत भवैख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जायत धुन पापन के भव पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इश नानक जादिक दान अनेक सुम प्रसाज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पाग ते नर फिर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिए सात समुन्द्रन लोक गायो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा में काहू पशाक उसी सने वायो को बुतान कौ पूजत है पश
को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पाश को मिरतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कबेउ बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आज संग्रिय पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई आवर ना त्याऊ जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो करे हवर अच्छा राख ले हो मोहे राख नहारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब अकर्क करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्बकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सरूपा रंक पहयो राव कही कूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत पूज खान बहुर राज दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मोह हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश वाय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़क के तमै सरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्व ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बेख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन कोशा करता श्री अस्तो जब पये दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावै सोई दुख न तसै व्यापत कोई अड़िल
सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट न तिन नरकी रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई, संबत सत्रह सहस पणि जय, अर्ध सहस पुन तीन कहि जय, भाद्रव सदी अष्टमी रविवारा, तीरस्त द्रव ग्रंथ सुधारा सोइया, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते, को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा, सगल द्वार कौ छाड कह गहे तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार, सगल द्वार कौ छाट कह गहे तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया, सहज सेती मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्द उता गावह हरि केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सुवारणा, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सला तेरी, नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वासो कीते काल कंट कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे, कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, साची लिवै बेन दिहिन माणी, दिहिन माणी लिवै बाजहु क्या करे वेचारिया, तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया, एस नाउ होर थाउ नाही शब्द लाग सुवारिया, कहे नानक लिवै बाजहु क्या करे वेचारिया, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदर हो जिन का मोह तुटा तिनका शब्द सचै सुवारिया, कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया, बाबा जिस तू दे सोई जन पावै, पावै ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे वेचारिया, एक भरम भूले फिरै दह देस एक नाम लाग सुवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै, कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै, आव हो संत प्यारे हो अकथ की करहै कहानी, करहै कहानी अकथ केरी कित द्वारै पाईऐ, तान मान तान सब सौंप गुर कहो हुक्म मनै पाईऐ, हुक्म मन्ने हो गुरु के रागा बहु सच्ची बाणी, कहे नानक सुनो संत हो कथे हो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया कि न तू सुन मन मेरिया, ए माया मुहुनी जिन एत भरम भुलाया, माया त मुहुनी किने कीती जिन ठगौड़ी पाईया, कुर्बान कीता किसै विटहो जिन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले,
साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइयै ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइयै सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया अंतु न पाया किने तेरा अपना आप तू जान है जी जंत सब खेल तेरा क्या को आप वखाण आए आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सचा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाय एक वेख पर सुन आया लाभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगत हकेरी बिखम मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार ताज त्रिशना बहुत नाही बोलना खन्ने आहो तिखी वाल हो निकी एद मार्ग जाना गुरप्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगतां जुग जुग निराली ज्यों तू चला है तिव चल है स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चला है तिव चल है जिना मार्ग पावहे कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावाहे जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावै तिव चलावहे एहो सोहेला सबद सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन तुरहों लिखिया आया एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गल्ली किने ना पाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों पवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिने गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै विण सहज जाए सहसा न जाए न जाए सहसा कित संजम रहे कर्म कमाए सह सहजियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन तो वहो शब्द ला कहो हर सु रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए जियो हो मैले बारहु निर्मल जियो हो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया ए तिशना वड़ा रोग लगा मरण मन हो वे सारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यो बेतालिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारहु निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहै गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रहै गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै संभाले आप छड सदा रहै परणै गुर बिन अवर न जाणै कोई कहे नानक सुनहो संतो हो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थै कोई पुछो बबेकियां जाए अनेक जूनी भरम आवै विण सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो विण सतगुरु मुक्त न पाए आवह सिख सतगुरु के प्यारे हो गावह सच्ची बाणी बाणी ता गावह गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिन को नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीवह अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजा हो होर कच्ची बाणी
ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ, ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਆ ਸਮਾਓ, ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਓ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸੇਵ ਸਾਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਤੋੜੈ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ ਸਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਿਹ ਗੁਣੇ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨਹੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਮਨਹੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਉ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨਹੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜ ਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਲਾਹਾ ਖਟੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹੋ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੁਰਤ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ, ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੁਰ ਅਨ ਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਉ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੈ, ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ,
कहे नानक ए शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मैं ज्योत धरी, हर बिन आवर न देखो कोई, हर बिन आवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। ए विस संसार तुम देख दे, इहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुरप्रसादी बुझिया जा वेखा, हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। कहे नानक ए नेत्र अंध से, सतगुर मिले देव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो, सचै सुनणै नो पठाए, सचै सुनणै नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख वेडाणी, ताकी गत कही न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो, सचै सुनणै नू पठाए। हार जियो गुफा अंदर राखो कह, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पाउण, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी, इक ना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाउ, नवनित तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारै, जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया। इहो साचा सुहेला साचै घर गावहु, गावहु ता सुहेला घर साचै, जिथे सदा सच ते आवहे। सचो ते आवै जा तुद पावै, गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बखसे सो जन पावहे। कहे नानक सच सोहेला, सचै कर गावहे।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा होई सहाए। अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निद आवै ताए, सब थाई होए सहाए। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब थाई होवो जी सहाए। दसा ही पातशाहियां दी जाग दी जोत, बाणी के बोहेथ चवर ताकत शत्र दे मालिक सतगुरु। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही, देख के अंडिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चिराए, गुरुद्वारां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी सिदक केसा स्वासा संग निभाया, तिना सिंघां सिंघणियां भुचंगी बच्चियां दी नाम दी कमाई दा ध्यान धरके बोलाओ जी वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलाओ जी वाहिगुरु। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चित आवै नाम चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियाय। तेग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत।

0: अमय दृष्ट शुभ करै हरै अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह
1: वस करै सबै बल
0: सदा सुख मन वसै दुख संसार होवै गुर नाव नेद दरियाओ जनम हम काल खतोवै
1: सो कहो टाल गुर सेवियै
0: अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जनम मरण दुख जाए।

0: शुरू करते हैं कुछ
1: तो मतलब नमक लेते हैं।

पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डिये खात, पड़ी है जेते बरस बरस, पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेती आरजा, पड़ी है जेते सास। नानक लिखे एक गल, और हो मैं चखना चाक महला पहला।

0: सुत क्यों कर रखी है सुत पवै रसोए, नानक सुत केव न उतर ज्ञान उतारे तोहे महला पहला।
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुतक कूड़ अखी, सुतक वेखना पर त्रै परतन रूप, कन्नी सुतक कन पहला अदबारी खाए, नानक सा आदमी बंदे जमपुर जाए, सबो सुतक परम है दूजा लगे जाए, जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए, खाना पीना पवित्र तो संभाए,

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਤੱਤ

सत व्योहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सोहेला कर ले जियो।

साध संग बिन से सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा वाहे गुरु। राग सोरठ वाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नहीं अब तू ही

ठहरूं मैं ओ दत्त, जल केवल जल मही, माधव क्या कहिय परमय सा, जैसा मानिय होए ना तैसा रहाओ। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया पिखारी, अच्युत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी, राज पोए अंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया,

0: रविदास जी बचन कर दियो, मेरा मालक ते हाथ तो भी नेड़े है भाई, ते जो कुछ हो रहा उहदी रजा विच ही हो रहा, सर्ब व्यापी है। भुला चुका देखे मां समय की संपूर्णता। राम कली मोहला तीजा, आनंद एको अंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया, मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सह सेती मन वजियां वधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावणे आईयां, शब्द उता गावो हरि के रामन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, मन मेरिया तू सदा रो, हर नाले हर नाल रो, तू मन मेरे दुख सा विसारना, अंगीकारो करे थीरा कर सब सुवारना, सबना गल्ला संवरत स्वामी सो के मन विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो, हर नाले साचे साहिबा, क्या नाही कर तेरे करता तेरे, सब किछ है जिस दे सो पावे, सदा सिफ सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसे वाजे, शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब, क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गुवाईया, कर शांत सुख मन वसिया, जिन इच्छा सब पूजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटों, जिस दिया ए वड़े आईया, कह नानक सुनो संतोष शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सपागे शब्द वाजे, करा जित कर धारिया, पंच दोत दुवस कीते काल, कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जन को से, नाम हर कै लागे, कह नानक तैं सुख होआ, तित करे अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे, सगल बिसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पैसर से पूरे, गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहिया पर पूरे, बिनवंत नान गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहिया पर पूरे, बिनवंत नान गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर।

0: अनल अगम जैसे लहर मैं ओ दद जल केवल जल माही। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान्यो गुरु रूप साध संग जी, आप जी वडभागी हो जो अमृत वेले तो प्रारंभ हुए गुरु दरबारां दी हाजरी शरदा भावना सहित भर रहे हो। बहुत ही प्यार दे नाल आप जिया ने अमृतमई बाणी दे कीर्तन, आसा की वार दे कीर्तन सरवण कीते, उपरंत अज दे श्री मुख वाक दी कथा सत्कारयोग ज्ञानी जसबीर सिंह जी खुश दिल तिना पासों आप जी ने सरवण कीती, उपरंत अरदास विच आप जी ने हाजरियां भरियां श्री मुख वाक सरवण कीते। समूह संगत दा धन्नवाद। बेनती है कि कल 1 अक्तूबर नूं धन धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी का गुरियाई दिवस है, सो आप जी ने ध्यान विच रखना, हाजरियां भरनिया, विशेष कीर्तन हाजरी भी होएगी 10 तो 11 बजे तक। अक्तूबर 5 नूं ज्योति जोत दिवस है धन धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का। 9 अक्तूबर नूं शहीदी भाई सुखदेव सिंह जी सुखा ते भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा दी। 10 अक्तूबर नूं भाई साहब भाई तारू सिंह जी का जन्म दिहाड़ा आ रहा जी। उपरंत 23 अक्तूबर नूं धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म दिहाड़ा है। 27 अक्तूबर नूं साहिब सतगुरु धन धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा है। बड़ी चढ़दी कला दे नाल ये सारे पुरब जिहड़े ने मनाए जाणगे, सो आप जिया के चरणों में सनिमर बेनती है कि वध चढ़ के हाजरियां भर के गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करो जी। आ हुण जो समुची मानवता दे भले वास्ते श्री सहज पाठ आपां लंबे समय तो कर रहे हां, संगतां घरां विच बैठ के भी लाहे प्राप्त करदियां हन, पावन पवित्र अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ होणगे, आप जीआं ने हाजरियां भरनियां, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

आओ एक खिन तिस बिन रह न सकूं, प्रीत हमारी लागी रहाओ, उनकै संग मोहे प्रभ चित आवै, संत प्रसाद मोहे जागी।

की ठाई, भई निमाणी सर निकता की, गुर सतगुर पुरख सुखदाई, एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया।

फिर भावै प्रेम सुखाई, तिस बिन घड़ी नहीं जग जीवा, ऐसी प्यास तिसाई रहाउ। सरवर कमल किरण आकाशी, बिकसै सहज सुपाई।

ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। कहते हैं ऐसे गुरु को सानू बलहार जाना चाहिए जिसनू नारायण नरपत नमस्कार। सारा ब्रह्मंड उसनू नमस्कार करता है, उसनू पूजता है, उसका ध्यान करता है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह अपने इस पावन शब्द राही सानू समझाना करते हैं कि भाई जी की बिरथा होए सो गुरु पहे अरदास कर। जद भी कोई गल हो तेरे मन के अंदर तू गुरु दे कोल आके बैठ के उस अगे अरदास करनी है। वो इना समर्थ है कि तेरे मन की बुझ के ते मन की पूरी भी कर देगा। ऐसे गुरु तू अपन बलखा जाना चाहिए आप मुक्त मोहिता।

मन नु जे कोई सुकून शांति दे सकता है वो महाराज दा नाम है। और ऐसी कोई पावर नहीं, ना पैसा, ना पदार्थ, ना तन दौलत, ना शोहरत, जे तेरे अंदर कोई चैन ते टिका बख्शिश कर सकता है वो सतगुरां दा नाम है। प्यार नाल खुद सतनाम श्री है। महाराज कह रहे ने तेरी आत्मा दी, तेरे जी दी जिहो जी भी इच्छा हो, रब ना करे कदे कोई औखा समा भी होवे ना तां भी अरदास कर। अक्सर लोकी दुखां विच ही अरदास कर रहे ने, सुखां विच ते सतगुरु कह रहे ने दुख तदे जा विसर जाए। दुख तां आउंदे ने जदों तू उन्हों भुल जांदा है। वड्डियां वड्डियां खुशियां विच फिर आपां शुकराना भुल जांदे। ऐसे ऐसे परिवार भी मौजूद ने। अपनी बेटी दी मैरिज है, व्याह है, पर प्यो सारी पार्टियां सारे रिश्तेदार छड़ के अपना नेम निभाने चले जाता है। सारे रिश्तेदार कहंदे ने किथे चलिया गया, ते जिहड़े जाणदे सन ओह कहंदे ने भी दुनिया इधर दी इधर हो जाए उन्हें नेम नहीं छड़ना। अपनी बेटी दा व्याह है पर नेम कुछ समय लई मिलन वास्ते अपना नेम निभाउण चले गए। जदों आए ते पुछया तुसी किथे चले गए सी, ते फिर हाथ जोड़ के नीवी पा के कह दिता जिसने ये खुशियां दित्तियां उहदा शुकर करन दिया, जिन्ने ये विध बनाई उहदा शुकर करन गया सी। सतगुरु कह रहे ने कल्ला खुशियां दा मौका ही नहीं, कल्ले पदार्थ ही नहीं, मन नू भी ऐसी बख्शिश मिलती है इंज लगता है वे तू ही बादशाह है, तेरे नालों सुखी कोई नहीं, तेरे वर्गा कोई होर नहीं, जेड़ा सबर चैन तेनू मालक ने दिता वो किसी होर को नहीं। एक बारी पावन पंक्तियां कह दियो सारे, मिलदा पता कितों है, सो लगा सतगुरु सेव जा को करम तुर, जिन्हां दे कर्मां विच लिखिया होया है सतगुरां दी सेवा, सतगुरां दे बचनां नू जिंदगी विच कमाउणा।

ಪಾತ್ರಗಳನ್ನಲ್ಲಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಮರಣ

ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੋਹਣੇ ਦਾਲ

Amen.

Amen.